अच्छा जी ठांग वाला भाई खनियारा समझूखी है समझूखी ने गरीबी ही मुझान रख रख खड़े देखा तासी मका वही कना मुंगता जान चिकम दे लग रहा का रखा वही तासु भी ही जान दासी खामोश खामोश खड़े दे जान भी बिल्कुल जिदा से दासी खड़े दे कना बस असाम मुंग चिकम दे कना बस मुंगस्ता खोलेने दर्जू

तो अगर कोई भी बंदा इस वक्त डैंड्रफ से परेशान है, उसके बालों में मौजूद है डैंड्रफ यानी खुश्की, जिसको हम पुश्तों में पखेला कहते हैं, तो उसके लिए इज़्ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के एंटी डैंड्रफ शैम्पू और साथ में आप ब्यूटी हेयर ऑयल का इंतजाम कर ले, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट के साथ साथ एक बेहतरीन क्वालिटी भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे, डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे और आप मजे से रहोगे और आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा। लेकिन तब जब आप लोग इंतजाम कर लोगे, अपने लिए लाओगे या अपने घर वालों के लिए लेके आओगे या अपने बच्चों के लिए लेके आओगे, तो तब ना इसी तरह रिजल्ट इंसान को ना मिलती

इंशाल्लाह 10 रुपया गोरे जिस संग रिजल्ट मिलावेगी सम क्वालिटीज मिलावेगी सम क्वांटिटीज मिलावेगी और इसका कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान हर प्रोडक्ट कम दे मनी पे गारंटे सरा यानी बिल्कुल जिदो पैसों सी मुबारक सरवर कई रिजल्ट नजर कई बिल्कुल इकबल दुकानदार ला वापस उड़ा पैसे ठीक ठाक अखला और मजी कवा।

ओके जी स्टासु मैसेजेस स्टासु कॉल्स फॉर दिस का कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द प्रोग्राम बरखा जुड़ेगी और द टांग वाले ने बिल्कुल जीता उस एड्रेस से हम वायमा और मेरे गुलाली और बरीशा को भी सलाम आई एम पठान क्वीन जी आज वहां पर प्रोग्राम नहीं है तो आपका सलाम नहीं पहुंचेगा। हाँ जी हुरैन मैं आप पे गया हूँ टेंशन ना ले।

बिल्कुल जी, हंसने की जरूरत नहीं है, तांग के कहने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, आई एम पठान क्वीन, थैंक यू सो मच। सलाम हसान भाई, क्या हाल? सब ठीक है भाई, मैं इज़्ज़ा ब्यूटी क्रीम यूज करती हूँ, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इट्स मी रवीश फ्रॉम टांग, थैंक यू सो मच डियर। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे, और लोगों को भी बताएं और बाकी अपनी दोस्तों सहेलियों को भी बताएं।

अच्छा वही कहना अच्छा हल्का सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगते हो ओए होए होए होए वैसी भाई जानी आई एम खुशी खान खाचा रखे खुशी खान खाचा एक रखना यो जहान मनना इज्जत मन से कदम से वही जी सलाम ठांग ना अनस खानिया अनसा यो जहान मनना दे ठांग ना और जाना खुशला होसे वैसे हेलो एंड हाय सलाम गुलगुल एंड बुलबुल राज भाई हाउ आर यू माय सलाम टू रुशिहान मारुश एंड ऑल साइलेंट एंड वायलेंट लिसनर वैसे टफा डेडिकेटेड फॉर यू वैसे सिफात प्रोग्राम बा वाले हैस्तान नवी वाजे वा सिफात प्रोग्राम बा वाले हैस्तान नवी के राज हान ये अमन रेडियो करक राता कवीना वाचे देर पुजरा पोरे और ठांग बने खकम ऐसा वैचे आपकी सबसे छोटी सिस्टर सुंदर सटक फ्राम अच्छा कंदा से रचेलना जी सुंदर से मुखर के यो जहान मन्नना सबरक्षले दफा थैंक यू सो वेरी मच वैचे बाई इट्स मी छोटी हादिया बाई आपने कल एसएमएस क्यों शामिल नहीं की दी भाई जान आज शामिल करो भाई बस कल से कॉलेज ओके जी चोरी हारी आयो जहान मना मैसेज शामिल छो वरुण वाला मैं हा देता बिल्कुल फर्स्ट के शामिल करी दे सा बस टेम मजबूरी भी टेम हाथ में शेकना बया गुड मॉर्निंग स्टार भाईया कैसे हो उम्मीद करती हूँ की बिल्कुल खैरियत से होंगे शो डेरा लश बस दो आपकी फैन देवा महसूर प्रोग्राम के हर कल है और जाने मैसेज का बोलो यो जहान मानना थैंक यू भाई खाना छू डेरा लश पर शो देवा यू जहान मानना थैंक यू सो वेरी मच भाई इसमें छोटी हाजिया भाई अच्छी भाई जुकाम मिली मलेरिया मिला भाई तो से हाथ खराब हो सरेंगे दादा बिल्कुल ठीक से वैसे ठीक ठाक है दुआ गुन की मोत हाथ दुआ गुन कवाई चल ठीक सा ओके जी छो लेते दुआ गुना वगे छिछूटी हाथ जैसे देखे ना हाँ ठीक सी भाई भाई दुआ गुन याद रखना

0: मैना
1: अच्छा भाई कना भाई छी तो आवाज से दादा ढेर मजे दौड़ दई जी माशाल्लाह
0: बदलशीना
1: माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच खुश और तो हाय माय फर्स्ट मैसेज यू आर शो।

ओके देने लवासे नो टेंशन हर बलाल चीज चावेश तो गुरुजी इशे आगे दिपर बिल्कुल बेस्ट रेन मजेदार आउट दे देने लवासे कुछ तो मसाला वगैरह से और चिकन मतलब छोटा मसाले देसी दस मसाले देसी मैदे मसाले देसी और भी नस्वान भी तो मैदे मसाला रोते जोड़ा शब्द ये दोसे मैदा में गैस के भी तेज़ अभियत के भी हमें जुड़ने पटे दर्दों के भी गुरी ज़बार बड़ी खबर है कि मैं चिपलार ला मोर ले चिकन देखना दारा उखले सी और अगेदी पर चिकन देखना जरूर इस्तेमाल के रवा एक मालश वेर बंदे के वजह से जुड़ी मसीदो रिजल्ट दा हर एक्चुअल रिजल्ट दी मिश नो टेंशन हर बलाल चीज चाह दर्दों ने दी मैदे मसाले देसी नो तो सी तो रोक ले मालश पियो के या नहर बंदे उठे युद्वी गुड आफ्टरनून मामूजान सनगी अमरूब अमल लिखे भैया अब नजोर की नमाज जोर की नमाज बड़ी टाइम पर पढ़ती हूँ अब की वजह से अमी ऐसे शाबाश दी थी रूबा मलिक मने खत मने से गुरा नजवान भी चिकी मधु से और जमापशान तकड़ा सड़े दिशी जसुमर पैसे लगो मजी अलग सिद्धरामन वैसे गुरे जहम लगो खर्चे हो जहम गुमल लग गया है मज़ा समझो जो खर्चे मैंने दिखड़े अच्छा सो बिल्कुल जी लेट्स सी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो गुरु सुख बिरा सर द कम जैन दे अस्सलाम वालेकुम अल्लाह दे मलश अल्लाह दे मलश सुख खबर के वे कम जैन تقریر بالکل نور سر سر شمل پروگرام بگالا بچکم دے الیکشن کو خام مسوتانا وعلیکم السلام یو جہان مننس

0: भाई क्या हाल है? सब ठीक है भाई। मेरे अबू आज बाजार गए हैं और मैंने अपने अब से नो टेंशन विटामिन सी फेस वॉश मंगवाया है। आई एम मेरे मन मेरा खास तौर खुशहाल है। मेरा हाल बिठी नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई जाना भगवान शो
1: समझ
0: में ڈیر خواہ ڈیم لمرن سی اس میں سے

और खुश भाई कसम चीज फेसबुक तो बचे मेरे मन से डॉक्टर सर भाई मो मैसेज न दिर्ची कच्चा परी हाउ सर आगे हो रहे मुझे कैसे हो मैं साबिया सर साबिया आपको मैसेज मेरे मन से खुशहाल इतना लेट रीड करते हो लगता है पहला पूरे बाजार के चक्कर लगा के आते हो लाओ कहने से तो टाइम इज ओवर चलते उसे खादू से आवाज से पल रो नाजमान पे दुआ गाने की आस दलो अलापमान भाई भाई चाटा इन लोग हम मोस्ट लिस्ट दलो अलापमान।

जितना प्रोडक्ट हमारे सेहत के हवाले से, और इन्हीं प्रोडक्ट के अंदर हमारी एक प्रोडक्ट जो आप लोगों को बेहद पसंद आ रही है और जिसके ऊपर आप लोगों की ढेर सारी मोहब्बतें केसन को मिल रही हैं, वो है केसन की ताकत प्लस प्रोडक्ट। और ताकत प्लस जो प्रोडक्ट है केसन एसो पाकिस्तान की, आप लोगों को हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। आप टांक में मौजूद है डेरा में या पर पहाड़पुर के अंदर, ये प्रोडक्ट आप लोगों को बासानी हर जगह से मिल रही होगी। और ये बेसिकली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ बात की है कि खुराक अगर मुतवाजन हो तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी खुराक प्रॉपर नहीं है, मुतवाजन नहीं है, तो वहां पर बहुत से प्रॉब्लम आपको सामना रहता है। ये गैर मुतवाजन खुराक जवानी के अंदर भी आपको मुतासर करती है, बुढ़ापे के अंदर तो बहुत ज्यादा मुतासर करती है। अगर आप 50 प्लस हैं तो आपको भी इस प्रोडक्ट की अशद जरूरत है। अगर आपके घर के अंदर 50 से ज्यादा उम्र के जो है बुजुर्ग मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं, कोई बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करवाइएगा। ये इंतहाई ताकतवर फार्मूला है केसन ताकत प्लस के नाम से। और इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल यानी कि डे फर्स्ट से ही आपको इसकी अफादियत का पता चलता है कि ये कितनी अहम प्रोडक्ट है। यानी कि जैसे आप इसको पीना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका हाजमा सेट हो जाता है, आपकी नींद जो है प्रॉपर आना आपको शुरू हो जाती है और आप सुकून की नींद सोते हैं। डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां, जहनी दबाव, स्ट्रेस जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद जड़ी बूटियां जो है वो अपने पावर से उसको दबा देती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। और जब डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें खत्म होती हैं तो आप पुरसकून हो जाते हैं और पुरसकून होने से आपकी सेहत मजीद बनना शुरू हो जाती है। तो बुजुर्गों के लिए ये बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, ताकत से भरपूर।

जी जनाब, जिंदगी का हर दिन जोश से भरपूर हो सकता है, मुस्कुराहटों से भरपूर हो सकता है, खुशी से भरपूर हो सकता है, जब आपके जिस्म के अंदर ताकत होगी, जब आपके जिस्म के अंदर तवानाई होगी, जब आपके जिस्म के अंदर एनर्जी होगी। केसन ताकत प्लस फौरी तौर पर जनाब आपकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए, आपके सोचने समझने की सलाहियतों को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, जिस्म का दर्द, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, ये सारी बातें खत्म होती हैं और आप बगैर

0: एनर्जी शेक बनाकर पी सकते हैं, जो आपकी नींद को बेहतर करेगा, आपके सुकून को बेहतर करेगा और आपके जिस्म को ताकत से भरेगा।
1: जा हो जिस्म में आए नहीं जा।
0: जी जनाब, जब आप दूध के साथ इसको मिल्क मिक्स करते हैं तो एक कप दूध के अंदर जो कैलोरीज होती हैं, जो ताकत होती है, वो तकरीबन 80 से 90 कैलोरीज होती हैं जो आपको एक कप दूध के साथ मिलती हैं। लेकिन जब आप उसी एक कप दूध के अंदर ताकत प्लस के 2 चम्मच मिक्स करेंगे तो कैलोरीज की तादाद 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब, यानी कि 1 गिलास दूध पीते वक्त अब आपको 80 कैलोरीज नहीं मिलेंगी, 240 कैलोरीज मिलेंगी। तो 240 कैलोरीज आपके वजन को बढ़ाने के लिए, आपके जिस्म को खूबसूरत करने के लिए, आपके जिस्म को ताकत देने के लिए जब आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो वो काफी होंगे। ये प्रोडक्ट हमने वेट गेन फार्मूला है बेसिकली केसन नेचुरल पाकिस्तान का। जैसे कि हमने एक और प्रोडक्ट आपको दी है केसन वेट कम पेट कम, वो बेसिकली हमारा जो है वेट लॉस फार्मूला है, यानी कि वजन को कम करने वाला फार्मूला है। ऐसे लोग जिनके जिस्म के ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी है, वो थाइस की सूरत में, हिप्स की सूरत में, कंधों की सूरत में, गर्दन की सूरत में, चेहरे पर भी चर्बी आ जाती है, तो जनाब वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करते ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और जैसे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, अक्सर मोटापे का शिकार कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जिनको खाना देर से हजम होता है और देर से हजम होने के बाद वो कैलोरीज इस्तेमाल नहीं हो पाती और वो मोटापे की सूरत में आपके जिस्म पर आ जाती है। तो कुदरती तौर पर हम कहते हैं केसन वेट कम पेट कम जो है वो चर्बी पिघलाने वाली मशीन है।
1: खुशी से
0: तो जनाब वजन कम करने के लिए आप हमारी वेट कम पेट कम और अपना वजन बढ़ाने के लिए ये जो प्रोडक्ट हमारी है जिसका ये बीजीएम आप सुन रहे हैं केसन ताकत प्लस,
1: ताकत प्लस, ताकत से
0: जी जनाब, इसको इस्तेमाल करेंगे जनाब 3 माह तक अगर आपने वजन को बढ़ाना है अपने को और आपका वजन कम है, बेतहाशा कम है, 40 तक है, 40 से नीचे है, लेकिन आपकी हाइट जो है 5 फुट तक है तो ये वजन बहुत ही कम होता है, इसको 50 तक ले जाने के लिए आपको ये ताकत प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके जिस्म को गोश्त से भरता है। और इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके जिस्म के ऊपर चर्बी नहीं आते है बल्कि गोश्त की प्रोडक्शन जो होती है, मसल जो है मास मसल के ऊपर ये काम करती है ये प्रोडक्ट, और 3 माह के अंदर आपके जिस्म को भरने का काम करेगी। लेकिन मजमूई तौर पर जो आपकी जनरल वीकनेस है, चाहे मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, और अगर इस कमजोरी को, थकावट को आप खत्म करना चाहते हैं तो केसन ताकत प्लस का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 दफा भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए काफी होगी, यानी कि आपके रूटीन का जिस्म में जो कमजोरी है, जो सुस्ती है, जो नकाहत है, उसको कम करेगी। और खवातीन में वो माएं जो नई नई माएं बनती हैं, उनके लिए बच्चों को दूध पिलाना एक बहुत बड़ा मसला होता है, और उनका दूध जो नई माएं होती हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि दूध का बहाव और दूध की पैदावार नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से ऐसी खवातीन को, ऐसे मर्दों को जो है बच्चों के लिए ढेर सारा खर्चा उठाना पड़ता है और वो डब्बे का जो है मिल्क शुरू कर देते हैं अपनी बच्चे को, तो जिसके ऊपर हजारों रुपए खर्चा होता है। तो ये जो ताकत प्लस है माँ को पिलाइएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस प्रोडक्ट को हमने जिस खूबसूरती से, जिस तरीके से डिजाइन किया है, वो माँ का दूध इंक्रीज करेगा, दूध बढ़ाएगा, ठीक है जनाब, जिससे बच्चे और माँ दोनों की सेहत बढ़ेगी। जनाब ताकत से भरपूर केसन ताकत प्लस, ऐसी माएं जिनको दूध ना हो, दूध नहीं होता जिनको, और दूध ना होने की वजह से उस दिन पे मैं आप लोगों को एक बात कह रहा था कि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। ठीक है, कुरान पाक के अंदर ये हुक्म मौजूद है और आजकल के दौर के अंदर खवातीन बहुत कम ऐसा है कि अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं, नहीं पिलाती हैं। 6 माह के बाद वो अपने बच्चे को दूध किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से छुड़वा देती हैं, जो वो अपने बच्चे का हक खा रही होती हैं। और यही औलाद जब बड़ी होकर नाफरमान बनती है तो कहते हैं कि औलाद हमारी नाफरमान हो गई, हालांकि आपने अपने बच्चे का हक जो है शुरू से खाया, कि जिसको हुक्म है कि आपने उस

दो साल तक दूध पिलाना है, लेकिन बहुत सारी खवातीन, कुछ खवातीन को तो मसला शायद हो सकता है, लेकिन कुछ खवातीन जानबूझकर दूध होने के बावजूद भी अपने बच्चों का दूध छुड़वा देती हैं 6 माह के अंदर ही, जो बच्चे का हक खाती हैं, यानी कि जो हुक्म है कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना है वो किसी बहाने से छुड़वा देती हैं। वो तो पकड़ में होंगी सो होंगी, लेकिन ऐसी खवातीन कि जो बेचारे इस वजह से बच्चे का दूध छुड़वा देती हैं कि उनको दूध नहीं है, ताकत प्लस को इस्तेमाल कराइएगा और फिर देखिए 1-3-4 दिन आप यूज करेंगी तो आपको बिल्कुल वाजे तौर पर फर्क महसूस होगा कि दूध का बहाव और उसकी मिकदार किस हद तक बढ़ गई।

0: वोरा ये सूर्या फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, अभी दिखाता हूँ जाके उसे।
1: इसके तो
2: ए मुरारी, फैन से पंगा नहीं लेना चाहिए। एसआई से फोन करके खबर कर, वो देख लेगा।
1: अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चल ना, चल जल्दी।
0: जैसा आपका।
2: इन लोगों को थिएटर में घुसने मत देना, समझ गया?

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुंफ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: What?
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: कर लेते हैं तो वो हमें थोड़ी तकलीफ देगी।
1: ऐसी बात है,
0: कोशिश तो ये हो कि अगर दो की भूख है तो फिर डेढ़ खा ली जाए, स्पेशली जब रात का खाना हो। और इसको आप जितना हल्का लेंगे
1: हाँ जी
0: उतना ही आप बेहतर रहेंगे।
1: ठीक हो गया,
0: ठीक है उसकी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, दिन में तो आप चलते फिरते हैं, आपका वजूद एक्टिव रहता है, खाना भी हजम होता है, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता, काम के रद्दोबदल और भी दूसरा थकावट और ये चीजें पता करते हैं यार मैं अब लेटता हूँ।
1: हाँ,
0: फिर इसी तरह ही है कि आप फ्रूट के साथ साथ दालें हैं, दालों में जो है ये तमाम दालें इस्तेमाल हो जाती हैं, ज्यादातर बस माश की सफेद दाल जो है धुली हुई, ये इसकी तासीर थोड़ी बादी है ताकतवर है लेकिन ये कब्ज करती है। फिर इसी तरह ही बेकरी की चीजें हैं तली हुई कुछ, वो भी बेकरी आइटम जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, तो फिर बेहतरी है कि आप काफी हद तक जो है कब्ज से वो जान छुड़ा लेते हैं।
1: ठीक है,
0: फिर एक चीज है कि आपकी एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, जिस टाइम वो आपके काम उसमें उसको फेल जो उसका होगा,
1: ठीक है,
0: वो आपके खाने को हजम करने में और खाने को रिलीज करने में बहुत जबरदस्त है, चाहे वो आपकी सुबह की मॉर्निंग वॉक की हो।
1: ठीक है,
0: बाकी ज्यादा सख्त वर्जिश की भी जरूरत नहीं है।
1: तो अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि जो चावल हैं
0: जी,
1: चावलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना
0: जी,
1: चूंकि डेरा इस्माइल खान है, टांक है, तो यहाँ पर हकीम साहब चावल मैं कहता हूँ इतने एक तो मशहूर बहुत हैं,
0: ज्यादा इस्तेमाल होते हैं,
1: खुद भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर
0: जी जी।
1: सो चावलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना
0: सही,
1: यानी डेली रूटीन वाइज तीन दिन चार दिन आप रेगुलर जो है ना आप चावल खा रहे हैं,
0: ऐसे
1: तो चावल के अगर कोई फायदा है तो फायदा बताएं, अगर कोई नुकसान है तो नुकसान बताएं।
0: देखिए इसका फायदा तो इतना नहीं है, ये एक लाइट किस्म के खुराक है
1: चावल,
0: आप चावल खाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कुछ देर बाद फिर आपको भूख लग जाए,
1: अक्सर ऐसा ही होता है
0: कि चावल जो है एक तो ये देर हजम है,
1: हाँ जी
0: ये बहुत देर में जाके हजम होते हैं वरना ये अंदर तैरते ही रहते हैं मैदे में। दूसरा यह है कि चावल जो ज्यादा बेहतर है वो है कि आप बिल्कुल व्हाइट चावल खा सकते हैं दाल या शोरबा डाल के, लेकिन खासकर ये बिरयानी और ये पुलाव ये देर हजम है,
1: अच्छा
0: तो ये थोड़ा सा बोझ भी देते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जब हम खाते हैं तो इस पे फिर साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती है,
1: ऐसी बात है,
0: ठंडा या पानी भी आ जाता है, बाद में बाजू का चाय भी चल जाती है, तो ये चीजें मजीद फिर बिगाड़ पैदा कर देती है। तो आप इसको हाँ खाएं जरूर चावल, लेकिन कोशिश करें कि उसके दरमियान गैप हो, ये ना हो कि हर रोज ही चावल हैं, उसमें कुछ गैप होना चाहिए कुछ दिन का, तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगे, उल्टा आपके लिए फायदे देंगे। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जब भी आपको चाहे वो पेशाब है चाहे हाजत है पखाने की, आप इसको डिले ना करो,
1: डिले ना करें
0: जब भी ये जरूरत है, क्योंकि दूसरे सूरत में फिर आपका मसाना भी कमजोर होगा,
1: ऐसी बात है,
0: और इधर से आपकी कब्ज की जो शिकायत है वो दायमी होती जाएगी। उससे बेहतर है कि जब आपको हाजत महसूस हुई है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि यार इसको निकालो बाहर, तो आप उसको फौरी तौर पर रिलीज करने की कोशिश करें। आप उसको डिले ना करें कि नहीं अभी मैं काम में मसरूफ हूं और बाद में देखेंगे,
1: ठीक है।
0: और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ की बात जब आती है जब ये बच्चों में कब्ज हो, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बड़ा आदमी तो कोई ना कोई बेचारा जुगाड़ भी कर लेता है, लेकिन बच्चे बाज का बता भी नहीं सकते और तंग भी ज्यादा ही होते हैं, तो इसीलिए असूल तो यही है कि आप उनको समझाएं, बजाय इसके कि बंदा गुस्सा करना शुरू हो जाए,
1: ठीक है,
0: उसकी बजाय उनकी डाइट का ख्याल रखें, उन्हें पानी पीने का बताएं, उन्हें फ्रूट्स की तरफ भी लाएं, और ये बाजारी चीजें जो हैं इससे जरा एहतियात करें, खाना वगैरह उनको पेट भर के यानी खाएं वो, ताकि पखाना भी उनका सही। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि बच्चों को दवाइयों की तरफ ना जाएं, कि यार के दवाई दी और वो पखाना आ गया, ऐसा ना हो, उनका नेचुरल तरीके से जो है वो पखाना आना चाहिए, कब्ज उनके लिए मसला है, क्योंकि फिर बच्चों की ग्रोथ रुकती है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: और दूसरा ये है कि बच्चे हैं तो फिर उनके लिए आगे जाके और मसाइल हो जाएंगे, इसी तरह अगर बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए भी कोशिश करें कि उनको जितनी नरम जूद हजम خوراک دیں گے
1: ایسی بات
0: اسی اعتبار سے بزرگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، جلدی ہضم